श्रोताओं, FM 102.8 पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, तो बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। Oh.
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, इंसान केवल उसका आविष्कार करता है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए, सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती झरोका। मिली जी सुनिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 307। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। इस प्रोग्राम का 10वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने। समय सुबह व शाम 6:45 से। सात बजे से लेकर आएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का समय होगा 8 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक 8:30 से और रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे। आज के फनकार आज केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक महबूब खान पर। सुबह व रात्रि 9:30 से आप ये प्रोग्राम सुनेंगे। दस बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग। 12:05 से यादों की महफिल। 1 से लेकर आएंगे प्रोग्राम सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखी सहेली सुनिएगा। चर्चा होगी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। बाकी के विषय होंगे घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी। कहानी पद्मश्री में जोधई बाई बेगा की कहानी आप सुनेंगे। मुझे कुछ कहना है में बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें। उपयोगी टिप्स में जब बनानी हो रेसिपी। चार बजे से हेलो फरमाइश, 5 बजे से छाया गीत। शाम 5:30 से आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन। शाम 7 बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक विजय तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आज आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। आठ बजे से सुनिए हवा महल में झलकी मुरादाबादी, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 9 बजे से लेकर आएंगे प्रोग्राम आपके लिए। 10 बजे वक्त होगा छाया गीत का और 10:30 से प्रोग्राम ढलती जाए रात।

कर्ण फूल के कटकर गिरने से मंदोदरी सोच में पड़ गई थी। वो श्री राम के व्यापक स्वरूप और पराक्रम की कल्पना भली भांति कर सकती थी। शिव जिनके मान, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु चित्त हैं, उन्हीं जगदीश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया है। वो पति को ये सब कुछ समझाने की भरसक चेष्टा करती है, किंतु रावण उसकी बात हंसकर ये कहते हुए टाल देता है, सच ही कहते हैं कि नारी के हृदय में छल, भय, चंचलता, झूठ, अविवेक, अपवित्रता तथा निर्दयता का निवास होता है। मंदोदरी द्वारा वर्णित भगवान के विश्वरूप के तत्व तो स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे भय कैसा हो। न हो, अपने कथन से वो उसकी प्रभुता की ही महिमा बखान रही है। रानी की गूढ़ बातें रावण के लिए विनोद का हेतु बन गईं। आमोद प्रमोद के क्षण बीत जाते हैं, सवेरा होता है। जिस प्रकार बादलों द्वारा बरसाया गया जीवनदायी जल पाकर भी बेंत फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार मंदोदरी समझ लेती है कि उसका पति काल के वश में हो गया है, उसकी मति मारी गई है। ऐसे में तो ब्रह्मा जैसा गुरु भी उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इधर श्रीराम की सभा में वृद्ध जांबवान ये परामर्श देते हैं कि अंगद को दूत के रूप में रावण की सभा में भेजा जाए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ है। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा हुई थी।
2: हाँ, जी जी। जब हम आलाप करते हैं
1: जी,
2: राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है।
1: जी,
2: ऐसा
1: जी।
2: नहीं कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है, और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुंचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है,
2: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
2: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गाके किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व होता है
1: जी,
2: वही किराना घराने में जो स्वर है उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा।
2: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के उसकी गोलाई इतनी अच्छी करती है कि एक गान सुनने को मन करता है।
1: क्या बात।
2: चलो,
1: तो हमारे श्रोताओं को इंतजार है राग गोरख कल्याण की बंदिश का।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना
0: जी,
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर
0: जी,
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं।
0: अच्छा,
1: ये माणिक वर्मा है, एकदम घरंदाज मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण
0: जी,
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: श्याम कल्याण तो आपने सुन लिया
1: जी, बिल्कुल। और इसे सुनते हुए एक गीत जो मन में गूंज रहा था, वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल।
0: अरे वाह, लेकिन डायरेक्ट इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम कल्याण की कुछ छटा हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, प्योरिटी नहीं रहती है, फिर भी राग की छटा रहती है।
1: तो सुनते हैं ये गीत।
0: हाँ।

सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ये है विविध भारती। प्रोग्राम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
0: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: उस्ताद आमिर खान की आवाज में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे बेजू बावरा फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डिले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: गीता दत्त को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में, बाजी फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।

शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म से। गुलशन बावरानी से लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे हाथ की सफाई फिल्म से। गुलशन बावरा ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया आर डी बर्मन ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर,

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे प्रोग्राम हम है राही प्यार के विविध भारती से।

आशा भोसले और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे कागज की नाव फिल्म से। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड

0: मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
5: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
6: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की

8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसे लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।
1: हम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का मुंबई केंद्र FM 102.8 पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

0: रॉयल की आवाजों में, माफ कीजिए, जसलीन कौर रॉयल की आवाज में खूबसूरत फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अमिताभ वर्मा ने इसे लिखा। चित्रलोक प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

0: तनिष्क भागजी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नीरज राजावत ने इसे लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना।
3: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: किल दिल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और नीरा जोशी देशपांडे की आवाजों में, शाद अली ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

किताबों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मैत्रेय का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: कॉकटेल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, प्रीतम का म्यूजिक।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: Ooh, Sarah, because that I did not care.

0: गुलराज सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था उंगली। मनोज यादव ने इसे लिखा, गुलराज सिंह का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जींचा संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ये जवानी है दीवानी, ये था फिल्म का नाम। श्रीराम और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम ने संगीत दिया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: वाह मंदाकिनी जी, आपको ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
1: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
1: जी जी।
2: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदनवार से लेकर हवा महल और अच्छा, छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
1: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
2: जी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल।
1: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी, धूप छांव। आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
2: जी हाँ जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
2: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की, ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं, ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
1: हाँ।
2: तो रेडियो कार्टून जो है उनके उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
2: जी,
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
2: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल, वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम करता है।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा
1: जी। तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में?
2: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए, और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुँचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नज़र रखना, तो ऑब्जर्वेशन, और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं। क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
2: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने देवेंद्र जी कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
2: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
2: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर तो की दीवारें आपने
2: घर की दीवारें बहुत खराब करते थे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा।
2: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में, तो वहाँ संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: क्या
2: तो
1: बात है?
2: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है? तो उन्होंने ये कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है, और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है, और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ, और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है।
1: अच्छा।
2: और उनकी जो पत्नी देवी हैं वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही हैं चांद की तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है, उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी,
2: था
1: जी।
2: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था
1: जी। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया। जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम
2: जी।
1: बताइए
2: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नज़र में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है। तो ये सब
0: तो, चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी। हाँ,
0: जब
1: बिल्कुल,
0: हम
1: बिल्कुल
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो
1: मतलब ये बिल्कुल
0: वो जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, कहता है कई बार उसे, जो संवाद मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी,
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: बहुत सुंदर जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन नहीं तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे।
2: फिर एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदीजींचा संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
7: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तो करना है वो बात है और
0: बहुत बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर की समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है, जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
1: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
0: और आज भी इसकी उपयोगिता
1: इसकी बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है, है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
1: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो, लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहाँ जानी है वो पहुँच जाएगी।
0: बस बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून।
1: हाँ,
0: तो एक दो अपने कार्टून के बारे में बताइए आप, की जहाँ आपको लगा हो की मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
1: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी। तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
0: जी।
1: तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो, पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरफ हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में बात भी हो गई।
0: कह दी। तो चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
1: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। हाँ।
0: बहुत सुंदर और गहरा गीत है, एक दार्शनिक गीत है, कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर।

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा, हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: और शुक्रिया,
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए,
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कम्प्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे बड़ी बात,
1: हाँ ये बहुत जरूरी,
0: मतलब दिमाग की खिड़कियां खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल, पेन, ब्रश, ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए, हाँ जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर ख़त्म होती है ये चीज़।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है और किसी भी कलाकार के खाते में ये बहुत बड़ा जन प्रतिदान है।
2: अरे
1: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है।
2: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विदा है, बहुत गहरी विदा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
1: देखते हैं,
2: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
1: सही बात है।
2: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
2: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
1: तू चंदा मैं चांदनी।
2: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया एक कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं अभी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। तो एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं ये कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज़ है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है।

0: कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: पहले
0: तो वहीं खड़े रह जाते हैं।
1: बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरे, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा झल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोंपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद उस सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई, जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है, आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको ये उसमें दिखाने की कोशिश है।
0: बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
0: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब तक?
1: जी जी जी जी।
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते अभी, मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं
1: जी।
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है,
1: जी
0: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही है 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं, एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में,
0: बहुत सुंदर गीत है ये।
1: हाँ, अमित कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
0: तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद का ये गीत।
2: न बोले। एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Tino college mein.
4: Don't worry.
3: Fees to dekho.
5: Hey, kya hal hai? Kya hua?
4: Fees ki tension.
5: Rahul ka bank account to hai hi. Rasta clear. बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं।
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया, वो क्या, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ,
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं? तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भावताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं, वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी,
1: तो ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उनसे
0: बिल्कुल। यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहां कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी,
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिताजी नजर आते हैं
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफ़ी हर चीज़ में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत हाँ चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता हाँ, नहीं है
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत,
1: जागरूकता बहुत है,
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो।
1: हाँ, हाँ,
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें। तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की, तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है, और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भैया देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल।
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो बारहमासी है। तो उन चीज़ों को लेकर कि रिश्ते ना टूटें, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा

0: आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं। स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th.

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: शुभा मुदगल और साथियों की आवाजों में अभी आपने श्याम अनुरागी की ये रचना सुनी। इसे संगीत में ढाला था गौरव इसर ने। और इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में

0: आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Women, we open their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722, जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ फिल्मी संगीत रचनाएं।

दत्ताराम की संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप का लिखा ये गीत, युगल स्वर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के थे। फिल्म का नाम था जिंदगी और ख्वाब।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था कैदी नंबर 911। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे दत्ताराम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। दत्ताराम के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत है, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम राका।

इस अंतराल के बाद यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की फिल्म का नाम परवरिश।

यह आवाजें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

चिड़िया चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया।

0: आया बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: ग्यावस थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।
6: आंख मिलाकर

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है। संगीतकार दत्ताराम।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों की। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट। गायिका है सुमन कल्याणपुर।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं, बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी, जिनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अति स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज, प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मत भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालू मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं उद्घोषिका।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो, हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना, यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुरों और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि 2 या 3 सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल भी हो। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और शाम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन खुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, वे भावनाओं की ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी एक छोटी सी हंसी पूरा गीत महका देती है। खासकर जब भी किसी गीत के बीच नायिका की सहज खिलखिलाहट अचानक सुनाई देती है तो मन जैसे उसी पल ठहर जाता है। वो हंसी कभी प्रेम की शरारत होती है, कभी छेड़छाड़, कभी नोकझोंक, कभी खुशी की निश्चल अभिव्यक्ति। सुरों के बीच घुली वो हंसी कानों में उतर कर सीधे दिल को छूती है और चेहरे पर अनायास मुस्कान ले आती है। गीत फिर केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देते ये गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत। स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा चलिए, दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?

तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? हुँ? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार, जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की, और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच पर जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल, ये गाना इतना मुश्किल है और इसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है। कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का, और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल, जीवन में ये रोमांस होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में कहीं ना कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं, तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसा कोई नहीं, आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती हैं और हम भी हंसते हैं, और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है, और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक या गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत ऐसे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ही अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। उनके पांच में से चार बातें तो चुटीली ही होती हैं। अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वहीं एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर में हूँ, मेरी दो छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहां हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

0: है,
1: यहाँ है,
0: किधर है,
1: उधर है,
0: ऊपर है,
1: नीचे है,
0: कहाँ है,
1: यहाँ है।
0: अरे याद कोई भी नहीं है भाई।

0: मोहब्बत हो जाती।
1: उफ कैसी तुम्हें बड़ा बेशरम है, देखो फिर आया हमें कर रहा है, ये बोर कौन है? अरे कौन है रे, कौन है रे?
0: ये तो मैं हूँ भाई। चोरी चोरी छुप

सुनाई देने वाली यह हंसी जैसी किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसको लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन सुहिन कांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया।

0: और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर

0: पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए। गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रवि का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी नैयर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।
2: दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ।

अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात। गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करत असून जागतिक हवाई वाहतूक क्षेत्रात भारतीय पुरवठादारांचा मोठा वाटा असावा यादृष्टीनं प्रयत्न सुरू असल्याचं नागरी विमान वाहतूक मंत्री के राममोहन नायडू यांनी म्हटलंय. ते आज नवी दिल्लीत CII या उद्योग संघटनेनं आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलत होते. भारत हे केवळ हवाई वाहतूक साधनांचे सुटे भाग जुळवण्याचं ठिकाण न राहता त्या भागांची रचना, प्रमाणीकरण आणि निर्मितीचं केंद्र बनू शकतं असं ते यावेळी म्हणाले. भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात जागतिक हवाई वाहतूक कंपन्यांना मोठा रस असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. गणेश मूर्तींच्या वाढत्या उंचीमुळे वाढणाऱ्या पर्यावरणाच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन. कुख्यात गुंड अबू सालेम याची सुटकेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली. MPSCची गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा आता येत्या 3 जानेवारीला होणार. आणि महिलांच्या आशिया चषक T20 क्रिकेट स्पर्धेत उपांत्य फेरीतला पहिला सामना भारत आणि बांगलादेश यांच्यात होणार. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे.
2: बिल्कुल आरती. और कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आपस में बातचीत की जाए. अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, आपके साथ मित्र भी हो सकता. हाँ, मित्र भी हो सकता है. तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए, जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना.
1: बिल्कुल. और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है. किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है.
2: बिल्कुल सही बात है. ऐसे में साथ बहुत जरूरी होता है किसी का भी, और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें. और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है.
1: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं. और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है, जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं.
2: बिल्कुल. और हम लोग सुन लेते हैं गीत.

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल, और जोधैया भाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल, और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों

0: के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
1: बिल्कुल, और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। तीन बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
0: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
1: बिल्कुल, और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
0: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाए। बाद में लकड़ी और सूखे कुमड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
1: बिल्कुल, और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
0: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठ कि जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था, उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गाँव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो, जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीजें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुमड़ा है, तो इन चीजों पे वो चित्र बना रही थी, तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीजें उन्होंने बनाई है उसमें।
1: बिल्कुल, तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीजें एक बहाने की तरह से ली जा सकती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
1: देखिए, उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के सामान पे ही उसका उपयोग किया।
0: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो जब तस्वीरें अच्छी बन जाती है तो उनको लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख ले, है ना। तो चलो इसी के साथ
1: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है तो बस लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है।

0: जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना। तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है वहाँ धीरे धीरे नोक झोंक पनपती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है, है ना।
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठा।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप लें और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती है ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है, साथ में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है हम वहाँ पे गाने चला के थोड़ी देर के डांस भी कर लें,
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: आदित, तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गए डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी,
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात तो सही कही,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी, एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है।

या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भी हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज़ आपको हर कमरे में जाइए, जो चीज़ आपको लग रही है कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते हैं तो रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए पति के लिए गा ले और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ाई निकले
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में

0: गीतों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलती रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
3: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं।
2: क्या बात है,
3: तब तो आपके अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
2: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
3: वो भी उसका।
2: और कई बार ऐसा मुझसे निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए हैं, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़ खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह इन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज़ तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोकझोंक घर में होती है सफाई के समय। तो
3: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती हैं, और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती हैं। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती हैं और कहती हैं कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूं, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
2: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती, नहीं
3: थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है।
2: वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार गहन को जुटना पड़ेगा।
3: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
2: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
2: हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
3: बिल्कुल आ जाती है। और भाई, जब हम खाना बना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किससे शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा अब चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
2: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
3: हाँ, अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
2: ऐसा कहने के बाद भी एक

0: घंटा निकल जाता है।
1: और कई बार जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक, एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ, एक चाय पी लेता हूँ, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।
0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाई जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
1: भाई देखिए इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो करती वो तो फेमस है। लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर के उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, इधर
0: पूछते भी है क्या बातें हुई।
1: और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं। तो कभी-कभी इस चीज का भी फायदा होता है। तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है। मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती है और तब बोलती है अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें। पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगी। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो। अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे। लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रहे हो या अड़ोस पड़ोस से बात करने लग जाओ। तो ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई,
0: चली जा रही हैं। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जानना है निकलना है काम पर।
1: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
1: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।
2: यूं ही तुम मुझसे

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले इसी निकाल कर काउंटर पर रख लें, चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचे, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिखकर भेजी रही है कि जैसे कि पिज्जा रोटी है, तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके खा सकते हैं और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महाबोध उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है, बस आज का सीजन चल रहा है।
0: अच्छा
1: जी, अभी गाँव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गाँव में? कौन सा गाँव है आपका?
1: जी मेरे गाँव का नाम है कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ तो हमारे गाँव के पास में एक दूसरा गाँव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा तो, लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पे उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन पर उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरी आपसे तो मैंने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा, कब हुई थी?
1: जी मैम मेरी 22 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा, आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम तारीख याद है, तो आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका सगी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है?
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को लेकर। और सखी सहेली में आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं। और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से भी मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना?
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा?
1: ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाई।
0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। 3 महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को। 3 महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी। आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का। मेरी बेटी आई थी कल, तो उन राखी बांधने के लिए तो मेहमान का खाना बनाया दीदी। जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पर आई थी।
0: अरे वाह,
1: हाँ बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने।
0: थक गई फिर?
1: थक गई, आज मेरे भैया अपन आए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी, हेलो फरमाइश पर सुनते हो दीदी।
0: अच्छा
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती?
1: चालू रहता है, सुबह हमारे अमरावती ये केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ।
1: और 11 बजे से हमारा उम्मीद भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना, हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी,
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो थकान रोज इतनी लगती दीदी। रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ।
1: उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो
1: दूर हो जाती दीदी।
0: हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की। जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
0: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
1: मंदाकिनी जी से।
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
1: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
1: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जी जी।
0: क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
0: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
1: घनी बैग का काम है।
0: बैग का?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
1: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
0: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
1: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके सुनने से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने मैडम उनके तो
0: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
1: घर का नाम बबलू है मैडम।
0: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
1: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
0: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
1: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
0: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
1: वो गाड़ी आती थी 4 पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
0: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जबी तो हमने जानना चाहा।
1: चाबी की मोटर आती थी ना जो उसको चलाते थे अपन। चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
0: उसको देखकर तो मजा आता था।
1: बचपन की यादें में कहीं बोला नहीं सकता मैडम।
0: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे आप?

0: आपके बच्चे हैं? क्या लाके देती हैं उनको, खिलौने लाके देते हैं?
1: शादी नहीं मैडम मेरी।
0: अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
1: जी जी सही।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
1: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है। और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, खाना अलग अलग किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं, वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है, तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ कैसे बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती हैं तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह

0: ऐसे कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
0: हाँ।
1: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है, पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन है उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
1: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
0: अच्छा, हाँ।
1: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
0: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा, और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
1: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है, ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
0: बहुत बड़ी बात, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं, और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
1: जी जी मैडम
0: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
0: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में, चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ, मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: ठीक है, जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में?
1: बिल्कुल, किश्तियाँ बहुत जारी है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
0: चलिए तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है, और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है।
0: हाँ, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद है बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं?
1: आज गीत है ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, क्योंकि जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
0: जी जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वह नहीं सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
2: झूमता।

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं।
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको

0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम। आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम।
0: अरे, पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका शहर?
1: बहुत बढ़िया है मैडम।
0: आपका शहर बताइए।
1: बहुत ही बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं है, एक महीने से कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और आसार है, झीलें अभी खाली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती
1: जी।
0: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने?
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम।
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना?
1: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना?
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
1: जी, अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन महाकाल की नगरी।
0: अच्छा,
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया। बड़ा ही अच्छा लगा। वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
0: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
1: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम। जिधर देखो उधर, मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुँचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना?
1: अभी वापिस से मानस बन रहा है इसी महीने में।
0: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे। कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है। फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
4: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना।

0: जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
1: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
0: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें होना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
1: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
0: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
0: मैं ग्रामबा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
1: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
1: अपनी जगह जो है बदायूं, उसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में चूंकि हम कभी आए नहीं है, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
0: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर। और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
1: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
0: हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
1: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
0: जी मैम, मैं वहाँ पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
1: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
0: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरु
1: जी
0: को रहते
1: जी
0: हैं।
1: वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
0: वैसे तो मैम, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
1: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी।
0: मैम हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरका।
1: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे?
0: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, इसमें बेहतरीन सनम तेरी बेवफाई का सिक्वा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी जी जी मैम, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी भैया भाभी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना?
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जो प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले कहाँ का है? मतलब वहाँ का डाल दीजिए। जी जी वहाँ डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैं ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो।
0: अरे
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम ने, मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा था, उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम।
0: उन्होंने ऐसे कहा
1: हाँ
0: जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, और
1: जी
0: जिंदगी
1: जी
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना?
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। जी जी
0: अच्छा, आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई
1: जी
0: बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीनिंग का, लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
0: चलिए, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम नमस्ते, मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष जी?
1: हाँ जी अच्छे हैं मैम।
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा, कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है, है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ़ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। और जब अंतिम दिन उन्होंने जब कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: आप बराबर पहचाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें,
0: लेकिन उसका इलाज करते तो समय कठोर बनना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी जी जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुनाएगा, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, ये हाँ रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली फॉलो फरमाइश, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है भाई।
0: क्या बात है। कितना
1: हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है भाई।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: हाँ जी हाँ चाहिए, आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा विविध भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ होता, उन्हें नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इतनी खुशी हो रही है कि किसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ भाई।
0: अच्छा,
1: प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति लेंगे भाई?
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिले ये नए रास्ते, कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उरूस के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है चाहे वो परभणी हजरत तुराबुल हक के दरगाह का उरूस यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और वैसे बहुत धन्यवाद।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेगी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरे दो, मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूँ मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हुँ? ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, न ही डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूँ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आजाद हूं। अब मैं अपने वश में हूं। हाँ, अब मैं अपने वश में हूं, किसी और के नहीं।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सर्वांसाठी सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदीजींचा संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आतापर्यंत या योजनेत 9,50,00,000 अधिक लाभार्थी सामील झाले आहेत। तुम्ही देखील 18 ते 40 या वयोगटातील असाल तर मासिक अटल पेन्शन सहित योजनेच्या अन्य 3 हमी लाभांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा।
0: कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं श्यामराज, संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक को। गीत लिखा है नवाब आरजू ने, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है बाजीगर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: पक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गौहर कानपुरी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं उदित नारायण, श्रेया घोषाल की, गीत है समीर का, संगीत है राम संपत का और फिल्म का नाम है खाकी।

लीजिए सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। धुन है जतिन ललित की, फिल्म का नाम है यारा दिलदारा और इस गीत में आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, तर्ज है अनु मलिक के, फिल्म का नाम है यादें।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी मुबारकबाद। लेखक और निर्देशक है गुरुमीत रामल मीत। रात 9:30 पर आज के फनकार, जो केंद्रित है निर्माता निर्देशक महबूब खान पर। आज रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए संगीता श्रीवास्तव को। कल सुबह 6:05 पर वंदन वार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 308।

संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए स्वर साधना की अनुपम परंपरा में किराना घराना श्रृंखला का 11वां भाग। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। ₹8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष श्रृंखला का 45वां भाग सुनिए। लेखक है मिलिंद सबनिस, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 2:00। कल सुबह 9:30 पर आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। आलेख और वाचन स्वर है नेहा शर्मा का, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। इस कार्यक्रम को दोबारा सुना जा सकता है 9:30 पर।

कल दिन में 10 बजे पिटारा के अंतर्गत श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीत सुनिए मंदाकिनी जोशी के साथ कार्यक्रम हेलो फरमाइश में प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। दिन में 11 बजे मिश्रित संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग और 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे सखियों के फरमाइशी गीत सुनिए कार्यक्रम हेलो सहेली में दीपा महेश्वरी के साथ प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी में सुनिए कहानी आवाज ही पहचान है, लेखन और वाचक स्वर है अरुण शेखर का, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल 7:00 सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, जिसमें आपको सुनवाएंगे फिल्म पत्रकार राज

कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका शकुन का शीनू। मूल कन्नड़ लेखक हैं B.R. गुदगुदी, हिंदी रूपांतरकार हैं S.A. हुनगुंद, निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दारवेकर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए नेहा शर्मा को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

0: अभी आपने सुना हरिहरन घनश्याम वासवानी, प्रतिमा राव और संतोष तिवारी को। गीतकार थे रविंद्र रावल, संगीतकार थे राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन विविध भारती से।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Sangeet Sarita

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ है। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की राग प्रस्तुति का जो एक तरीका है जिसे भावपूर्ण प्रस्तुति कहते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
2: कल ही हमने इसके बारे में थोड़ा सा
1: आलाप की चर्चा हुई थी।
2: हाँ। जी जी, जब हम आलाप करते हैं
1: जी,
2: राग का जो प्राण है वो आलाप है, और इसमें स्वर में भी भाव रहता है
1: जी।
2: ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्द में भाव रहता है, स्वर का भी एक स्वभाव रहता है, और हर एक राग के स्वर का एक अलग स्वभाव रहता है।
1: हाँ।
2: राग भाव को सर्वोच्च स्थान इधर शास्त्रीय संगीत में है, और किराना घराने में केवल राग गाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका भाव, उसका रस और उसका वातावरण, ये सब को श्रोता तक पहुंचाना यहाँ पे मुख्य लक्ष्य होता है। स्वर के माध्यम से हम हमारी भावाभिव्यक्ति
1: जी
2: दिखाते हैं, शब्दों से अधिक स्वरों के माध्यम से ये की जाती है। शब्द तो जरूरी है इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं।
1: हाँ।
2: लेकिन स्वर जो है, स्वर में जो प्राण है, स्वर में जो भाव है, वो भाव प्रत्येक स्वर में संवेदनशीलता और माधुर्य यहाँ पे झलकता रहता है। विलंबित लय का सहारा हम लेते हैं इसीलिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक एक विस्तार होने से प्रत्येक स्वर को हम ठहराव करते हैं। वो ठहराव मिलने से क्या होता है, राग का भाव एकदम स्वाभाविक रूप से उभर कर आता है।
1: अच्छा।
2: और एक गाना जो है उसकी गहराई समझ में आती है क्या है।
1: तो किस राग की बंदिश से आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगी?
2: हम तो गोरख कल्याण सुनाएंगे आपको।
1: क्या बात है।
2: लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा और कुछ बोलना है इसके बारे में।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
2: स्वरों के बीच कोमल मींड तथा श्रुतियों का सूक्ष्म प्रयोग इस भावपूर्ण अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। राग का विस्तार धीरे धीरे और संतुलित ऐसे गाके किया जाता है जिससे श्रोता राग के भाव में सहज रूप से डूब सके। किराना घराने की गायकी श्रोता के मन को सीधे स्पर्श करती है। इसकी प्रस्तुति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। तानों से अधिक स्वर सौंदर्य पर बल, जहां अनेक घरानों में जटिल जटिल तानों का अधिक महत्व होता है
1: जी,
2: वही किराना घराने में जो स्वर है उसकी शुद्धता है, मधुरता है और भाव अभिव्यक्ति है, उसे प्राथमिकता दी जाती है।
1: अच्छा।
2: एकदम छोटे छोटे आलाप, एकदम सिंपल आलाप, लेकिन उससे इतना स्वर का गुंजन होता है, इतना उसको हम गा गा के उसकी गोलाई इतनी अच्छी करती है कि एक गान सुनने को मन करता है।
1: क्या बात।
2: चलो,
1: तो हमारे श्रोताओं को इंतजार है राग गोरख कल्याण की बंदिश का।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर।
1: अभी तो गोरख कल्याण आपने सुना
0: जी,
1: लेकिन हमेशा बोलती हूँ मुझे ऐसा कंप्लीट नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी कुछ रह गया है क्या, ऐसा लगता है कलाकार के नाते। अगर आप सुनते हैं माणिक वर्मा का स्वर
0: जी,
1: भावनिक स्पर्श अथवा भावपूर्ण गाना, परिपूर्ण गायिका इसे हम कहते हैं।
0: अच्छा,
1: ये माणिक वर्मा है, एकदम घरंदाज मुलायम स्वर लगाने वाली, अत्यंत सौंदर्यपूर्ण गायकी दिखाने वाली गायिका। उन्होंने गाया हुआ एक सुंदर राग है श्याम कल्याण
0: जी,
1: और ये राग सुनकर ही आपको पता चलेगा कि आलाप चीज क्या होती है, राग को कैसा आगे लेके जाना है।

0: वो बहुत ही लोकप्रिय गीत है मुगले आजम फिल्म से, मोहे पनघट पे नंदलाल।
1: अरे वाह, लेकिन डायरेक्ट तो इसमें श्याम कल्याण नहीं मिलेगा हमको, श्याम कल्याण की कुछ छटा हमें ये गाने में मिलती है। वैसे तो फिल्मी गीत ऐसे ही रहते हैं, प्योरिटी नहीं रहती है, फिर भी राग की छटा रहती है।
0: तो सुनते हैं ये गीत।
1: हाँ।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

102.8 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: संग्राम, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार है समीर, संगीतकार है नदीम श्रावण और फिल्म का नाम था है संग्राम।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संघर्ष इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। गीतकार है समीर, संगीत है जतिन ललित का।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी।

0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: गीत है विनोद राठौड़, अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है समीर, तर्ज है नदीम श्रावण के। फिल्म का नाम है दीवाना।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन है आनंद मिलिंद की और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: मान लीजिए कि कोई कुरियर वाला बन के आपके दरवाजे पर आता है और वो कहता है कि आपको एक कोड आएगा। अमूमन नॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है कि कई कंपनीज हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं तो वो कोड आता है जो कुरियर वाले को देना होता है। इस तरह से भी कई लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है जिसमें उनके साथ पैसे निकाल लिए गए, या

0: व्हाट्सएप या मैसेजिंग के जरिए एक लिंक आई और उसको आपने क्लिक कर दिया। सपोज ये दोनों चीजें हो गई कि आपने ओटीपी भी दे दिया या लिंक क्लिक कर दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि मुझसे तो कोई गलती हो गई, अब क्या किया जाए? फौरन तो पैसे नहीं निकलेंगे, तो बचाव क्या है?
1: कैसे है सर कि जैसे ही आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है आपको इमीडिएटली 1930 पे कॉल करना है। वो इसके लिए कॉल करना है क्योंकि 1930 में कॉल करने के बाद फंड जो आउट हो चुका है आपके अकाउंट से और वो अब बढ़ रहा है जो भी साइबर क्रिमिनल है उसके अकाउंट की तरफ, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स से उसके तरफ जाने वाला है, एक से दूसरे अकाउंट वॉलेट अकाउंट में। तो जैसे आप 1930 पे कॉल करते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालते हैं आप सारी, आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो वो जो कंप्लेंट है उसके बैकएंड में बैंकर्स जो भी है, हर बैंक के एम्प्लॉयज है वो लिंक्ड है, वो उस अमाउंट को, वो जो फंड का फ्लो है उसको ब्लॉक करना शुरू करते हैं और जिस वजह से जो फंड्स आगे बढ़ रहे हैं उसको होल्ड या रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो अमाउंट रुक जाता है वो हम वापस विक्टिम को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिटर्न भी कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं उसमें, और फिर जो भी कल्प्रिट्स है उसमें मोस्टली अदर स्टेट के ही, कोई साउथ इंडिया का विक्टिम है तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के अकाउंट्स यूज होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया का विक्टिम्स है तो वो अकाउंट साउथ इंडिया के यूज करेंगे। तो जो भी लोकल पुलिस है जहां पे FIR रजिस्टर होता है वो वहां पे जाके उनको अरेस्ट करते हैं एंड फिर उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। तो एक तरीके से ये पोर्टल से अकाउंट का पैसा बचता है और कल्प्रिट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है फिजिकली पुलिस जाके, इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है।
0: 1930 पर तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, ये आपने बताया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगा या अपने वॉलेट्स को या मोबाइल ऐप के जरिए लॉग आउट हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा, या अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा तो काम बन जाएगा, क्या ये प्रभावी तरीके हैं?
1: सर कैसे है, अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई UPI ID जो है उसको अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं और बहुत बार विक्टिम्स को ये मालूम नहीं होता कि उनके अकाउंट के साथ UPI ID लिंक कर दिया है। अब जब UPI ID लिंक हो जाता है तो उसको OTP की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ MPIN डालना है जो पहले से ही उसने सेट करके रखा है। मान लीजिए आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, हफ्ते भर के बाद पैसा आया तो वो आउट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है कि आपने बैंक को बोल के आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया, आपने सिम कार्ड चेंज कर दिया, आपने अननोन कॉल्स जो आ रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया, ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, सब कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, ये सब करने के अलावा आपको बैंक में जाके ये भी चेक करना जरूरी है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसको कोई एक्सटर्नल UPI ID तो लिंक नहीं हुआ है। तो वो अगर लिंक हुआ हो तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो उसको डीलिंक करो। दूसरा, सिर्फ किसी के लिंक भेजने से या सिर्फ किसी के भेजे हुए लिंक को ओपन करने से आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाने वाला।
0: ओके
1: हाँ, आप जब तक एक्सेस नहीं देते आपके फोन का, जैसे बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप टीम व्यूअर या फिर उससे सिमिलर ऐसे कोई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो जिससे आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा, जब तक उसके पास एक्सेस है तो उसको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें हो रही है वो दिख रही होती है, रियल टाइम में दिख रही होती है। वो आपको इसी के लिए कहेगा कि 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कीजिए ताकि वो देख पाए आप किस तरीके की एक्टिविटी फोन में कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद वाली एक्टिविटी वो शुरू कर देगा और OTP आना शुरू हो जाएगा, वो OTP उसको दिख रहा है जो आपके मोबाइल में आपको SMS आ रहा है। तो कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मत कीजिए, कोई भी एक्सेस आप किसी को दीजिए मत कि आपके फोन में होने वाली सारी चीजें उसको सामने वाले को दिखाई दे। तो ये अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई अननोन ऐप नहीं डालेंगे, तो आप आपके साथ होने वाले फ्रॉड को बचा सकते हैं। दूसरा, रही बात OTP की, तो OTP तो सर बेसिक चीज है कि हमको किसी को भी नहीं देना है, ये तो सबसे पहला रूल है कि OTP तो किसी को भी नहीं देना है, किसी कंडीशन में नहीं देना है।
0: और ये जो कुरियर वाले मांगते हैं, तब
1: देखिए सर, कुरियर वाले जो मांग रहे हैं तो हमको उनको जो OTP देना पड़ता है वो ऐप के जेन्युइन बेस्ड है क्या वो चेक करना जरूरी है। वो OTP हमारे पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है, वो हमारे बैंक का तो नहीं है। सामने वाला जो इंडिविजुअल मांग रहा है वो उसका, देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो आपके पास आता है उसके डिटेल्स आपके ऐप में रहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो बंदा वही है। आजकल सारे ऐप ने ये फैसिलिटी दे और वो आपसे वो डिस्क्लेमर भी लेते हैं कि वो जो इंडिविजुअल आपके दरवाजे पे आया है उसकी आइडेंटिटी आपको ऐप में दिखती है, वो वेरीफाई किए बगैर आप उसको OTP नहीं देना है।
0: क्या कोई लिंक भेज के आपका फोन हैक करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है?
1: देखिए सर, रिमोटली फोन हैक करना आसान चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिंक ओपन करते हैं और लिंक ओपन करने के बाद कोई फॉर्म रहता है, जैसे आपका अगर HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, SBI बैंक में अकाउंट है तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उनको ये जानकारी रहती है इनका अकाउंट किस बैंक में, आप उसको फिल करते हो, उसके सारे डिटेल्स डालते हो, तो मीनवाइल आपको एक OTP जनरेट हो जाता है, वो सारे डिटेल्स बैकएंड में वो क्रिमिनल को दिख रहे हैं जो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे फिल कर रहे हो जो उस लिंक से ओपन हुई है। जैसे ही आप फर्दर डिटेल्स उसमें डाल देते हो तो सामने वाले के पास आपके सारी डिटेल्स है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो बैंक ने आपको कहा है किसी को देना नहीं है। तो आपको बैंक को भी रिपोर्ट करना है कि मेरे साथ इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, एंड अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं दिए है, आपने कोई भी ओटीपी या कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसे गए तो आप डिस्प्यूट फॉर्म बैंक में भर सकते हो। और आरबीआई की गाइडलाइन से अगर आप वो उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको बैंक रिफंड भी कर सकता है, बट उसके लिए आपको बैंक में जाके डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने सेट किए हुए उसमें आप क्राइटेरिया में बैठते हुए नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको आपके बैंक मैनेजर डिटेल्स दे सकते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए कि विवेक जी, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है, इतने सारे आप साइबर क्राइम सुलझाते रहते हैं, क्या अपना मोबाइल किसी जान पहचान के दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या ट्रेन और प्लेन में यात्रा कर रहे साथ में लोग, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर अचानक मिल जाने वाले, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिखाने वाले लोगों को देने के बाद कोई मुसीबत आ सकती है?
1: बिल्कुल आ सकती है सर। आपका फोन या आपका वाईफाई या आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए।
0: कई बार लोग वाईफाई भी मांगते हैं कि जरा ये हॉटस्पॉट लगा दो।
1: आपके इस बात पे मुझे वही स्ट्राइक हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को वाईफाई दे रहे हैं, उस वाईफाई को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए आप किसी ने मेल कर दिया आपके इंटरनेट को यूज करके कि इस पर्टिकुलर मॉल में बॉम्ब रखा हुआ है, इस एयरपोर्ट पे बॉम्ब रखा हुआ है, या फिर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो वो आईपी एड्रेस आपका कैप्चर होकर पुलिस आपके पास आएगी। तो पहले तो आपका जो भी इंटरनेट है मोबाइल का, उसको बहुत सिक्योर रखिए। फ्री वाईफाई भी अगर आप यूज करें तो केयरफुली यूज कीजिए। और रही बात कि आपने आपका फोन किसी के हाथ में देना, इससे ज्यादा डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है वो आपके मोबाइल में है, एंड वो डेटा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, एक सेकंड के लिए आपका मोबाइल चालू हो गया, इंस्टॉल कर लिया, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जो भी डेटा है वो रियल टाइम में सामने वाले के पास जा सकता है।
0: अगर हमने अपना फोन किसी रिपेयर शॉप को दे दिया तब?
1: देखिए सर, रिपेयर शॉप में काम करने वाला इंडिविजुअल उसके अंदर क्या ऐप इंस्टॉल करेगा, इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। तो जो ऑथेंटिक शॉप्स है, सर्विस सेंटर्स है, वहाँ पे ही आपने आपका मोबाइल जो है वो रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मोबाइल में कोई वायरस डालना या ऐप डालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी ऐप्स है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे आईफोन है मेरे पास, एप्पल का फ़ोन है, तो उसमें ऐसी चीज़ें किसी भी फ़ोन में की जा सकती है। इसी वजह से आपका फ़ोन प्रॉपरली पासवर्ड इनेबल्ड रखना, आपके जो ऐप्स है उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वो आप करेंगे तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो डेटा को वैल्यू है। तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, एंड आपके मोबाइल से कॉल की जा सकती है, मैसेजेस की जा सकती है, कुछ भी क्राइम हो सकता है, या आपका डेटा जो है उसको मिसयूज़ करके क्राइम हो सकता है। आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है, आपके सारे एप्लीकेशंस लॉगिन होते हैं, आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपके मोबाइल में होते हैं, तो उसका भी मिसयूज हो सकता है।
0: तो अपना फोन सुरक्षित रखना सबसे पहले
1: बहुत जरूरी है। अच्छा पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो होना चाहिए, 4x0 नहीं होना चाहिए। लोग आजकल 4x आईफोन में पासवर्ड सेट करते जीरोस, सो पासवर्ड ऐसा रखिए, या तो डेट ऑफ बर्थ सेट करते, तो ऐसे पासवर्ड रखिए, और उसको ऑफनली चेंज भी करना चाहिए। और किसी को आपका पासवर्ड जो है बताना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिससे हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं।
0: बिल्कुल। अब देखिए, इतनी सारी बातें आपने बताई, तो एक गाना तो हम आपकी पसंद का सुनवाई सकते हैं आपको,
1: होश वालों को नजर क्या सरफरोश।
0: क्या बात है, गाने आप बहुत शानदार सुन रहे हैं। सरफरोश फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में है।

0: हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे जी से, और बहुत सारी बातें हमने की। विवेक जी, चलते चलते एक आखिरी जरूरी नुस्खा, जादू की पुड़िया क्या देना चाहेंगे आप अपने सुनने वालों को?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हर किसी ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, आपको आने वाला जो भी कॉल है, जो भी मैसेज है, वो जेन्युइन है या नहीं, आप उसको वेरीफाई करें। जहां पे भी पेमेंट की बात आएगी, आपको अलर्ट मोड पे जाना जरूरी है कि कोई भी पेमेंट करने से पहले आप वो जेन्युइन है या नहीं, उसको आप वेरीफाई कीजिए। एंड अगर आपके साथ फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या आपके रिलेटिव फैमिली किसी के साथ भी हो जाता है, तो सबसे पहला काम है आपको 1930 ये जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करना है। अगर वो व्यस्त आए तो cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे आपको रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एंड फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में आज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
0: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना वक्त और इतनी जानकारियां आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 102.8 FM और न्यूज ऑन EIR ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work

0: विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

102.8 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम विविध भारती मुंबई से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में ठीक 8:05 पर आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

भरा नमस्कार साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: में गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के

0: सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का रोहन का और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में

0: गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुम्बकम, that is one earth one family one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe secure peaceful and sustainable space domain. Anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: Pradhanmantri Modi ne देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। 2 दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: aar.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है सूरज सनीम ने, संगीत है राम लक्ष्मण का और फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं साधना सरगम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो

0: होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
1: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा, मुंबई की तरफ जाने के लिए इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता, सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद।

ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आजा कि देख लूं तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

गुलों में रंग भरा ये प्यार का तोहफा, खुशबू फैली हो जैसे रात की तन्हाई में। कितने मौसम बीत गए ये रंगत तब जाके नजर आई है, जो अब आए हो तो कुछ देर बैठो, चमन की बेबसी का राज कलियों से पूछो।

ये आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

0: नया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी, वो दिल का नशेमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा, दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

एक उतरात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ ना कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

आसमान की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं। जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

0: छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: देखो टर्मरिक

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल